सभी श्रोताओं का स्वागत।

का समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी

by that, put the defeat in my identity, your

scorso avvicinante all'Italia.

解みたい。महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरक्षा करने के लिए जरूरत है।

तो 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरेंद्र और 8 बजकर 30 मिनट पर

capace di mettere a carico la mia figlia, dove

கிடைக்கிறோமே மனச

चार बजे सितारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादें थे। सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं शिक्षिका निखिल प्रदीप मंदा की विद्यार्थी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा शायद बीस और 5:45 पर रानी मेरी पुरानी। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सविता। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 बजे कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड। इसके लेखक और निर्देशक है गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज उत्पन्न का, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म का घोषणा पर। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छायादीप, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये जानकारी आज प्रसारित होने वाली।

मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में विशेष और चिंता हो गई थी। देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम युगल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहाँ जहाँ श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष

आईसी के खजाने से हम जो लाए हैं ऐसा लाया हीरा जिसकी रोशनी से या कहें कि जिसके अलग अलग पहलुओं से उठती किरणों से हम सभी की आंखें चकाचौंध हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 1982 में पहली बार प्रसारित किया गया था। आइए उस दिन को ताजा करें। संगीत सरिता कार्यक्रम की संकेत धुन वही जो 1982 में हुआ करती थी और खुद घोषणा भी उसी दिन की। आइए सुनते हैं

0: आपकी आवाज का जो पकाव है बताता है कि इसके पीछे स्वास्थ्य संगीत की लंबी कामयाबी है। कैसे थे?
1: साधना साधना तो है, लेकिन ज्यादा अगर क्लासिकल हम बहुत ज्यादा रियाज करें, जैसे कि क्लासिकल सिंगर करते हैं, यानी 8-8 घंटे तक गाना, अगर इतना रियाज अगर सुगम संगीत वाले करें तो उनके आवाज में वो लो और एक मुलायम होती है, मुलायम वो रहती है। इसलिए हमें उतना रियाज नहीं करने दिया गया, फिर हमने रियाज किया। रियाज यानी सुबह बहुत जल्दी उठना, अंधेरे में और खरज लगाना, उसके बाद 1 घंटे तक इसको हम लोग मतलब मैं रियाज करती हूँ।
0: तो आपको मतलब घर में ही किसी की शिक्षा मिली या
1: मुझे ना मेरे पिताजी, यानी आपको मालूम होगा गुरु नाथ का जी क्या सुंदर थे, उनसे हमें थोड़ा सीखने को मिला, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, बहुत जल्दी मैं छोटी थी देखो जल्दी से। उसके बाद मैं मास्टर नवरंग जी से गाना सीखती रही और जब संगीत विद्यालय की मैंने क्या किताब की परीक्षा दी थी, तब वो किताब की जो परीक्षा दी थी मुझे उसमें भी याद नहीं है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब उनका आई ना बाहर दिवाना में कॉपी किया करती थी, मुझे उनका गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और नज़ाकत सलाम इतना हर तरह से बेहतरीन गाना, बहुत मुश्किल होता है मेरी नज़र में, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं।
0: अभी आपने बहुत छोटी से संगीतकारों के कुछ नाम लिया थे, तो मैं आपसे सवाल इसलिए करूँ कि नहीं कि आपको जैस का भी बहुत जानकार है, मुझे मालूम है आप तो उन्होंने संगीत के कलाकार हैं, लेकिन एक छोटा तो ही सुरों का आपको ज्ञान है कि जो खान साहब की गुलाम अली खान साहब की जो आवाज़ थी उसकी क्या चीज़ आपको अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद है?
1: देखिए, एक तो संगीत के लिए गाने वाले के लिए पहले से तरह के वो आवाज़ और सुर पावन स्पष्ट और जो बोल है, अगर वो ठूरी गा रहे हैं तो वो बोलों के अगर भी क्लासिकल गाते हुए भी काम देते हुए भी इतनी अच्छी करते थे कि वो मन को लग जाते थे। बचपन से मुझे मैं छोटी थी तब तो उनके मैं गाने सुनती थी तो मुझे यही लगता था कि उनकी नींद उतनी ही अच्छी है, उतनी काम स्पष्ट है, तो टिकनकर दिखा के वो चीज को लेती थी। वैसे नजाक सलाम उनके जितना फास्ट तान मैंने आज तक सुनी, इतनी फास्ट तान और सरगम उतनी ही उनकी फास्ट थी, और जब वो स्लो गाते थे तब भी उनका संतुलन आवाज का और तान जब फास जाते थे तब का वो कमाल का था मेरी नज़र में, एक आर्टिस्ट की नज़र। हाँ जी,
0: वैसे देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत और हमारा फिल्म संगीत दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, मान्यता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जिन कुछ फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का कुछ जगह जो है वो सालों साल वैसे ताज़ा रहते हैं, सुनते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कानों को वैसे ही मीठे लगते हैं। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग कहाँ तक फिल्मी गानों में किया जा सकता है?
1: पहली बात तो ये है अचल जी कि शास्त्रीय संगीत से हर गाना बनता है। शास्त्रीय संगीत नींव है, फिर इमारत खड़ी रहती है। तो आप कोई भी गाना लीजिए उसमें शास्त्रीय संगीत सुना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप कहती हूँ कि शास्त्रीय सुगम संगीत में शास्त्रीय संगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक शुद्ध राग रखेंगे तो एक जैसा लगेगा। क्योंकि मालकंस का गाना अगर आप चार गाने बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा, क्योंकि वो सुर रहे वो ही रहेंगे, इसीलिए वो एक जैसा। लेकिन उसमें अगर दूसरे सुर मिलावट करेंगे तो वो थोड़ा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा। और फिल्म के लिए बहुत जरूरी है कि राग में मिलावट करें और बहुत खूबसूरती से मिलावट करें तो बहुत अच्छा लगता है।
0: मतलब ये कि ज्यादा उसमें अलाप और मूर्तियाँ और हरकतें,
1: नहीं हरकतें मूर्तें सब हो, लेकिन एक राग की जैसे सात सुर एक कोई भी राग लीजिए, अगर वही सेम राग में अगर आप 10 धुनें बनाएंगे तो एक जैसी लगेंगी, इसीलिए मिलावट करने से वो अलग अलग लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी।
0: एक सवाल है, मैं तो बहुत साधारण लेकिन आपके मुँह से ही इसका हम उत्तर सुनना चाहते हैं कि जैसे कि नियमित रूप से किसी का पेशा है गाने का, वो रोज गाता है, गाया आके वापस आता है, कि उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो कान पूरा छेड़े और आवाज को खोले रियाज करे?
1: जी मैं आपको बता दूँ, जो भगवान में दी हुई आवाज होती है वो उम्र के 20 साल तक रह सकती है, उसके बाद उसमें कंपन आने लगेगी, उसमें वो जोर नहीं रहेगा। इसलिए हर सिंगर को सुबह उठ कर रियाज करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि सिगरेट पीना, इससे भी गले में लगे सांस में फर्क पड़ता है, ये सब चीजें संभालनी चाहिए और रियाज करना बहुत जरूरी है। मेरी नज़र में रियाज करना चाहिए क्योंकि आज तक मैं भी रियाज करती हूँ। धन्यवाद अशोक जी, आपने अपने अनुभवों के आधार पर संगीत साधना करने वालों के लिए एक अनमोल बात कही है कि ईश्वर की साधना बहुत आवश्यक है। और अब ये संगीत चर्चा कार्यक्रम के श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
2: संगीत चर्चा कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से एक गीत गाते हुए बन कर रही थी डॉक्टर अशुला नागर।
3: कितना अनोखा लगेगा। लेकिन डॉक्टर अर्चना नागर से आशा भोसले की ये जो बातचीत हमने सुनी उससे कई बातें स्पष्ट हुई। उनके लिए शास्त्रीय संगीत तो संभव था ही, लेकिन नवरसात्मक प्रतिभा की पहचान बनाने वाली सुगम संगीत के समंदर की मलिका की ये आवाज जो है इसकी जितनी दाद हम देंगे वो कम होगी। मित्रों आइए आशा भोसले के गाए दो गीत के अंश सुनते हैं। फिल्म का गीत जिसमें स्केल यानी सुर पट्टी बदल कर आशा जी ने क्या हो गया

के मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले से बातचीत।

हैं विविधता की हस्ती सेवा देश की श्रेणी भर गई भूले विसरे की ये कार्य

0: अपनी प्रदीप की सुपुत्र में मिथुन प्रदीप
1: उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4

在主流里面。

0: के सजीव प्रसारण में आएंगे। अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सती सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सती। 2 जून सती सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के गीत।
2: बधाई हो बधाई
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बार। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भव्य विश्व गीत। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, एहसान रिजवी के बोल और संगीत है अनिल विश्वास का।

0: आरती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा,
0: विविध भांति से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिपता है मोहब्बत का राज,
1: प्यार का राज सुनोरी
0: बचता है छाया जी विविध भांति से।
1: सदा रही है सदा रहे
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया जी सिर्फ विविध भारती पर। भोले बिखरे गीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए छोटी छोटी बातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा सुने। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, धुन बनाई अनिल।

उसी कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना मौसम फिल्म से है। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज में बोल गुलजार के संगीत है मदन मोहन का।

Ephesians 5, didn't it tell you that it was

मंत्री राजनाथ सिंह भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके सीमित झगड़े के लिए कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

problema da guerra, ele está me

your obedient and life will be in me. निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और

किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

control visa और विमान एजेंट के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त

सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक आपात आदेश पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूचे कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे छोटे लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी।

पीड़ित काम करने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले

about when he's defined.

diferente, que es ser bien.

अपने फोन पर हमसे बताएं अपने दिन के बारे में और फरमाइश करें अपने पसंदीदा घरों के बारे में। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिन की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

कनेक्टिविटी चल रही है, उसके कनेक्शन का तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा अनुमान ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। इसको देखते हुए कई मेट्रो सिटी रीजन के लिए जो है अलर्ट जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है

put some yellow eggs in the

0: सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विजय भारती पर।

0: सभी सभी के जीवन से जुड़ी कुछ याद है।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना

0: ঈশ্বর প্রেরণ বলুন হাসিকে ফেলেন কি জাদু কি নেন বাদনে বলে যে আপনিও তাকে বলুন विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे वीडियो के बीच जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। दोस्तों, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। धूम्रपान केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जिन्हें पता है, बल्कि स्वास्थ्य लोगों का इससे नुकसान होते हैं और ये मानव शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। इसके जो प्रभाव होते हैं वो लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं या थोड़े समय के बाद में, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की श्रृंखला जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जीवन बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होता है और जीवन की गुणवत्ता जो है वो घट जाती है। कुछ और भी इस विषय पर हम बातें करेंगे। अभी आपको सुनवाते हैं यंगस्टर फिल्म का गाना पीके की आवाज़ में, सईद कादरी के बोल संगीत के प्रीतम का।

0: कोई एक मेगाहर्ट्ज़ पर अभी इस समय में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाएं।

चलो कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना केसी की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना अभिषेक राय के संगीत।

हैं तम्बाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तम्बाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है, उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तम्बाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये

તરીકે આભાસને કૌશલ નિમિત્તે બોલ સંદેશ

इस गाने के साथ ही आज का त्रिलोक कार्यक्रम सम्पन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू भी देवी।

विश्वास। बहुत कम उम्र में एक बालक अहिल को संगीत का चक्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अहिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे युगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 वर्ष की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल विश्वास की बहन

आग से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे किरण लाल देसाई। यहाँ अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में संगीत किया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, ईद की रास्ता और वतन वगैरह। उस बारे में अनिल विश्वास का नाम इसी तरह कर लिया और इसकी बारी की साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन,

काफी खुशी हो रही थी। 1945 में उन्होंने फिल्म क्रिसमस में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने से देखी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म क्रिसमस के गाने

छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहाँ कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकल के नौजवान गाते दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफज़दा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल जसवाल के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

कुछ सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वादियों की जरूरत है बस वही वादे उनके संगीत में होते हैं। कभी पंडालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाई थी।

सब संगीत दिखा गया। हमें विश्वास है महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया सन 1941 में आई बहन और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से चली थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई पैदा की यानी बेगम अख्तर की

कार से जुड़ी हुई एक तस्वीर है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लड़की के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन बना रहा था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को

is going to

कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है, कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी,

करीब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने सपाट से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती है। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना कनक महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूँ। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान भी थी कि किशोर कुमार की आवाज में मधुर सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना

मोटी बात करनी चाहिए।

team of Navy Citizens Youth Corps में सुना संसद उदास के स्वर में। आइए वापस सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में गजल शाह है कबीर गढ़।

Christian never acts negatively.

Yeah.

그렇게 생겨서 아침에 하루 있어요. 그래서 그렇게 생겨서 문제입니다.

कर मैं तेरा हीरो का जी जी अरिजीत सिंह की स्वर में क्वांटम मनी की भूल है ताकि कार्य कर सके।

बाकी मेन्स को भी

I think I just managed to use the second one to be very good.

Está esperando,

tamaya siya din yung mga kasal sa intang ng lutan o kaya ng

YouTube. और आइए अब सुनते हैं केके और तुलसी कुमार का गाया फिल्म मिलने से गहरा एक फिल्म का गाना। गीतकार है पंखी जालंगी और संगीतकार है

0: की पुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम।

0: चीजें खुशियों की रंगोली खुशी की चमक यादों की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच
2: बधाई हो बधाई
0: जिसमें के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

और एक बार का लिखा पाई।

0: अपनी प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: की अलीशर सिमाई और जेम्स की थी। फिल्म का नाम था दिल में किसी अपने कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमी रेशमिया ने।
1: दो जून सखी सहेली के अंदर में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक हिजादों की नहर, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। कार्यक्रम का अपना की निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केपी की और रीति के मैट्रिक।

0: अंदर सजे जी खुशियों की रंगोली हसी की खनक जादू की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई

Cody Masterson. कार्यक्रम सूर्योदय सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो बड़ी हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायक होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम ले

कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना। बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक, बस उन्हीं रिश्तों से हम जब जाने पर हम खुद को तनहा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुनहरे सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप है ना हमारे साथ। तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में ही फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा ही शब्द

0: लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ
1: और 400 मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया फुटबॉल के जो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला जाके तू पार्टिसिपेट कर। मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल में सेलेक्ट हुआ। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गोविंदर बुजी का क्या
1: है? नमस्ते सर, मेरा नाम गोविंदर बुजी है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। जो अडवान के दायरे के नीचे भाग है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मौजूदा गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम

इससे ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।

शराब बरामद की गई है और बियर भी बरामद की गई है।

نريدهم وتشتري منهم في الشراء في المقابلة شام سايت عبد الله.

की होने वाली पीड़ा है। हम अपनी जिंदगी में कितने अनजाने जीते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे इन भूला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी होने के बाद मिलते हैं, बच्चों से भी सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुनीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी जज्बात पेश किए हैं। एक छोटा लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही है, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुनीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक छोटा लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए हैं। जाने शब्द में कई रंगों में झलता है, यादों की जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिखरने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूँ कहूँ कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का।

तरीके से रिश्ते चले आई, खुद को तनहा कर लिया आपने और बाजार को लगा कि नहीं मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए मैं जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से।

たくさん作って

से शब्दों की माला को गज्जाल से इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो योग और विनय का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है। ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहाँ एक और खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी हृदय की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में ही रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसर भी चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं न कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इसलिए से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सफर में महसूस करेंगे। बस

तुमको निपटाइए, उसके बाद फिर भी सुन लीजिएगा रोज ही कि कार्यक्रम आपके लिए हमको पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का एक सुनहरा सफर जहाँ अभियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुँचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, सबकी दोपहर में गीत आपको सुकून देंगे। लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी किस्सा है बिछड़ना भी वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांग कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे से उसे ही सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसी जड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जाकर करती हैं आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा खाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार है, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसे ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है, हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई चीज, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारे रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंखों से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छुपा होता है जहाँ हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं।

स्थिति के साथ छुट्टियाँ बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं। क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपको कोई जाने वाला किसी भी कारण से ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ ही आप किसी से रोक कर चले आए हैं, किसी की जिंदगी से चले आए, आपने किसी रिश्ते को धक्का बता दिया है या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बता ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई।

चले जाना या अकेलापन और खाली जमीन इंसान को अंदर से झंझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द का उम्र चलता रहता है। बहुत सी बातें अच्छी रहेगी हमारी जमीन की जो किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती है, आंगन की धूप और चौकट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनकी बीते कितनी रातें अनाथ हो गई। तकिया आंसू से भीगता रहता है, मम्मी दरवाजे से जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल छूटता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग ढूंढते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रहता है कि धीरे धीरे योगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है, न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यही था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंखों में सांपने लगता है। साधना तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में होती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, तो बस यही दुआ है कि जहाँ भी हो खुश रहो, किसी मोहब्बत करो। यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार

अकेले हो रहे हैं। वही श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात की है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई अच्छा है कि कितना अकेलापन है। एक छोटा लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने की शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। कि आज मैं बीच में टाइपिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए छोटा सा कि मैं हूँ ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है कि आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। मनीष छोटा लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी कमी खो दी हो तो छोटी व्यक्ति को कब बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ दूरियाँ ही बेहतर होती है। बिल्कुल केवल ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई

आता जाना भगवान के घर, ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा। जी ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वही श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन से ही रहता है, किसी उसका इंतजार होता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहाँ माँ निपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए चिपक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा अपनी कर्तव्य विमुख का पूरे परिवार से देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पर खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहाँ सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई को बेटी के ससुराल जाते हुए भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है। वाकई आंखें भर आई है और इतने का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मतदे नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा होते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही लिखते हैं छोटा, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है। अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक धोया उसे, ऐसा महसूस करते होंगे। वही एक छोटा लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियाँ साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक छोटा लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहाँ किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है।

गीत को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम जोड़े। गीतकार साहिब रुद्रंगी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूँ अचानक चले जाना मेरे लिए दिल पीड़ा दायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल जाता था। क्योंकि कई तरह हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और इन समाचार सुनने के बाद लगा कि मुझे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। मन को अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन कुछ था कि उनके बिना हर चीज के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भारत पर था। मैं ये छोटा लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूँ और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ विविध भारती को। मैं एक छोटा लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिखर जाए तो मेरी तो जिंदगी ही मुझसे बिखर गई। एक छोटा लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में, आज भी तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक छोटा लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदा, क्योंकि बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वही एक छोटा लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगर 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में उतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं में लिखे हैं और अब सुनेगा सफर से मन रखी जिसे चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक

और अब श्री लोकसभा के मंडल की विशेषज्ञ ने इजाजत समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे रख लेते हैं।

जरूर पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े हमने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा।

Dawson, I

supported you.

0: सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें, जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी या तो

la vayan a entender las bendiciones.

पैदावार से जुड़े हमने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। देश की कृषि अर्थ

फिल्म की गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी डोंगरगढ़ गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनुष्का और तन्वी गजभिये और ये सब आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी सरदार बानो उबैद रजीवर जुनेद अरीना और मंसूरी का लोकसिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार का गीत।

पुरुषोत्तम श्यामत्कर, ज्योति श्यामत्कर और चेतन श्यामत्कर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आपने रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और उनके परिवार वाले। और ये खत्म मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेदी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आज सभी फिल्मों को होती है किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आने पर छुट्टियाँ और संगीतियाँ है रजनीकांत की अगुवाई में सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव, आप हैं गांव भिजोरनी नई दिल्ली से साबित होटल निराशी मोहब्बत बेगम जावेद शनाया अखान और उनके परिवार वाले और मध्य प्रदेश के जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, सुप्रीम, शुभम, देवी किचन, भावना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहेगी। दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की चमक यादों की महक, बातों में भूलेगी अहिंसा की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच। जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानु जी के संग। हिमानु जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले कार्यक्रम

सेंटर में अगला गीत सुनने जाते हैं। भोपाल से सुधी, श्रीमती मालती, चंचल, नवनी, पूरी, ईकी, गौरव और उनके अन्य साथी बतरेंगे। छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और धर्मेंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये गर्वद अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखे, ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल कलर मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में एम जी हसमत की गीत रचना है, सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत

चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनिता में, गीत रचना राजा नेहरू ने खान की है और धनी लक्ष्मी कांत जायसवाल की। सुनने की ख्वाहिश मत आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत विनय ठाकुर और उनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री कानात अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, पवन गुप्ता और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकी, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनिता।

0: निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अगली सत्र का दूसरा भाग।
1: क्यों रे, किस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा हो गई। मुझे लगता है ये किताब में बन देता
2: बहुत
1: दीदी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को स्वानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। देखो देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही है? ओ देसी, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ दो हफ्ते की छुट्टी ले लो। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहते हो?
2: ऑपरेशन से पहले देवी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम
1: रखा। ओह नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहाँ पहुँच कर तुम्हें तरह तरह की बहुत यादें बन जाएगी।
3: लेट्स गो समवेयर एल्स।
1: मैसूर और बेंगलोर का प्रोग्राम बना कर जाए।
2: नहीं नहीं, कभी नहीं, अब कोई प्रोग्राम नहीं बना।
1: और देवी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा।

Mm-hmm.

अरे मन में शांति लाने के लिए कह रहा हूँ, कम ऑन, जल्दी दूसरी गाड़ी चाहिए।

0: जन्म के बाद परिवार के साथ में लिप्त पड़ा शायद वो एक आंधी का बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन उसे जरा
1: मीठा है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं।

कोई बहुत गुरु रहा हो तभी संभव हो सकता है कि किसी

तुम्हें तो जो एलिटी अरे क्या हुआ बोलो अरे कि बोलो क्या हुआ

0: अच्छा चलो पहले शुरू करते हैं।
1: डॉक्टर रामदास बच्ची को एग्जामिन करते रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें जितने ही बार बबुल हो गए, उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा और कुछ कुछ निकाल डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। तब मैं अपनी वेदना व्यक्त की जाती। मैं चाहिए हो लॉरेंस ने कब से समाचार मेरे गाल बनाया।

sempre loro di differenza.

लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को खेल लें तो सभी ने मुझे बहुत उत्साह कर लिया तो मैं तुमको खास को अभी जिसने अगले ही अपने स्वभाव बना लिया है अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं हुई समझा कोई कुछ समझ न सके इसी में तो आपकी जीत है मैंने जीत इस भाई के जिंदगी में मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया

0: कलेक्ट करने के बाद मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ और उनके खड़े कर देने वाली तरह की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी। स्टॉप दिस नॉनसेंस आई सेड नो इट्स नॉट नॉनसेंस बट इट्स नॉट रामदास आधार ही पारों को जिलों को बदनाम मत कीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं नहीं नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था।
0: क्यों?
1: ये सच है ना? दो घंटे के बाद पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़ कर बुलाने के लिए गए लेकिन उस वक्त आप बाहर जा चुके थे। ये सब आप जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक
0: डॉक्टर
1: से

Doctor Ramdas could have to be a good

सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एन जोश, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: मुख्य समाचार आकाशवाणी के राष्ट्रीय केंद्र से ये आकाशवाणी जनपद का विविध भारती केंद्र है। शाम के 4:02 हो चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से चलेंगे कार्यक्रम इच्छा
1: हिंदुस्तान हमारा है। गिनती पूछ लेगा ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जी हाँ वही कभी सही, यानी शब्दों की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ उनके गीतों में गंगा जमुनी तहजीब पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे। तब तक हमें महान कवि प्रदीप जी को उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा, और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी है गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मिथुन प्रदीप। स्वागत है आपका मिथुन जी विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
1: जी,
2: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
1: जी,
2: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो, तो ये हमारी रग-रग में बसा हुआ है
1: जी।
2: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
1: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
2: जी।
1: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसे हैं।
2: मैं तो अच्छी हूँ
1: मित्र जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी के सुपुत्री हैं, और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा, और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था, और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे इलाहाबाद में पढ़ते थे।
1: अच्छा,
2: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के, मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी, और वो कवि कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था
1: जी।
2: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि

0: कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा,
0: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
1: जी,
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
1: जी,
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा
0: जी, और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूँगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहाँ पर थे रावल जी, और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में। वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया, अपनी शैली में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ। तो वापस से वो मैनेजर आ गए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। फिल्मों में कैसे लिख सकता है, बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसने साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। ये कौन से दर्शन की बात है, किस फिल्म के लिए?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए। उनका जो रूपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी,
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि कर दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मित्र जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया गया आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज दे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप, एक कैसा गोल्डन वो है।
1: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं।

0: कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे। और जो निखिल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा,
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी। घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा। तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे। लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा,
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती, तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चल

0: आती है उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी,
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी नहीं बोलना है या गुजराती, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम,
0: फ्रीडम। हाँ, तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं
1: थी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी, और हमें ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माता जी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूँगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊँ कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा,
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे। तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी है मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा।
1: अच्छा
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ। तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ। तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेकर। तो वहां से कोई नहीं आया, माँ मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल कुछ था नहीं, ना तो कोई ऐसे टेलीफोन थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किसने शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे उनको पता था कि उनका फोटो देखा था, अरे नाना जी आप आए हैं, आइए। उसे माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ फिर किससे शादी की है। खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था वो विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ, एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे सबसे बड़ी बात है
0: क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब ये शिक्षा दीक्षा भी इस मामले में की गई।
0: ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को

0: के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, इनके बारे में आपकी क्या विचार बदले?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, लाइक जैसे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों करते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा। और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम पिता की तरह मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो,

0: को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से, तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, उनको कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
1: बिल्कुल
0: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
1: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर देखा। तो मिथुन जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊ जी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो सब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा, और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला। कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
1: एक क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था, तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो और ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झटको दिया।
1: हाँ, और तब तक वो कभी प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी में वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
1: हाँ,
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, क्या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, बीबी ने अनल पुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन किया था, जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीनता पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था। एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन ये यही कविता है जो उन्होंने लिखी उसी वक्त।
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ और वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ,
1: तो मित्र जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम

0: रोटी से फिर हमने लड़का
1: बिल्कुल हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे।

0: भक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और गीत को वापस रिवाइज किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात की तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए दोस्त आए बापू के तो बातें होती थी तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो

0: उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान, जब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं भूमिगत भूमिगत। तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहाँ के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, भूमि के अच्छे वहां से वापस आ गए, ऐसा ठीक हो गया। वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे दिल में रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो है दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत है वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुग्ध हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किसी ने गाय के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी
0: सही बात है।
1: और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि बच्चों की भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है, आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
1: कोई बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हो या भजन लिखे हो, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक इसका बिल्कुल पहुँचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का गीत और सुनने से आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही साबरमती के संत जी ने कर दिया।

संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए

0: बड़नगर में उनकी पैदाइश। बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
1: जी,
0: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ चलते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जो भील जाति के लोग ही, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूँ डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहाँ पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
1: जी।
0: तो भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी। रामू वहाँ जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए, तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना जो खनक है
1: जी,
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं,
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
1: जी।
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल,
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
1: बिल्कुल, वो
0: दिन छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जब की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
1: दर्पण में
0: उखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास टीवी उनके गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज है उनके पास,
0: हाँ।
1: आज भी उनके
0: सुनते हैं
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को सुनते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगे?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।

0: झांसी के प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि विरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं जिसे देखते थे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया है, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। तो आप उसे कैसे देखते हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई है, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो सुनती गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे, तो हमारे वहाँ पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास में एक रेडियो रहता था, तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब का गाना आला साहेब का, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको कि देखो देखो आई का सरवलो भाई का तो सुनिए सब लोग, तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण में सोचती थी कि मेरे बापू मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, तो सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे बुलाती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये भी पता था कि बापू मतलब

सोचते हैं, हरे दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति मिल जाती है। जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल जहाँ हम लोग सोच

0: अच्छा न्याय हो रहा है, सर्वप्रथम ये सुने कि कोई लाज करे चतुराई, कर्म का लेख मिले ना जाए। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आ रहा है, अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: हैं। इस चीज में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मिटे न रहे, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में।
0: और दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे। तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ, कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत

छोड़ती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान को नए नक्श बनाने वाले ने अपने ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती।

करते हैं तो आपकी दो आंखें शायर हो जाएं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

होती है दिल का। खैर, आंखों के बाहर प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है और यह

से मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। बिना रघुनाथ मंदिर से सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार।

इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

Yani.

0: अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कोई सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के

की रहेगी कि हम कल कभी यूनिवर्सिटी कल कभी करते हैं और जो हम यूनिवर्सिटी बनाई है तो नो पॉइंट इज एफर्ट है एज आई सेड वी वांट टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स हु विल सर्व द कंट्री जो हमारे देश की सेवा में लगेंगे पूरे दुनिया में अपने इंसान छोड़ पाएंगे तो क्या आपको एग्जाम की खुशी होगी तो हमारी ही एक अलग लाइन है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो ब्रिज बनी थी उसका उन्होंने

खासियत ये है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वी आर करिकुलम इज डिजाइन बाय जीओटी, इट इज स्किल एंड टैलेंट फोकस्ड करिकुलम। यहाँ पर बच्चों को जो कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं, जब एक यूनिट खत्म होता है तो हम उनको फैक्ट्री विजिट पर और साइट विजिट पर भेजते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन है,

चीजें साइड से, अगर आप उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो हम उनको सीवेज डिस्पोजल सिस्टम दिखाने भेजते हैं, जिसको का जो टाउन फिल्ट्रेशन प्लांट है सीवेज डिस्पोजल हम वहाँ भेजते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम उनको फैक्ट्री विजिट पर भेजते हैं, ताकि वो इस चीज को जो क्लासरूम में थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको वो कोरिलेट कर सकें प्रैक्टिकल से। साथ ही साथ जैसे आपने देखा कि जीओटी में अभी सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, तो वी साइड ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनको हैंड ऑन ट्रेनिंग देती है, प्लस हमारे कैंपस में भी जो और सब पॉलिटेक्निक में शायद नहीं हो, हमारे यहाँ सीएनसी मशीन है, 3D प्रिंटिंग मशीन है, और भी हम बहुत सारे इक्विपमेंट लाने जा रहे हैं। हमारे जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लैब्स है, जहाँ पर अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप हैंड ऑन ट्रेनिंग हासिल करके अपने एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा हमारे यहाँ 20 और 25 क्लब्स बने हुए हैं, जैसे लाइक एक्सटेम्पो क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी क्लब, क्रिएटिव राइटिंग क्लब, यूनिटी क्लब,

गेम बच्चों को मुहैया कराए जाते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ बच्चे क्रिकेट फुटबॉल से लेकर के सब कुछ कर सकते हैं। खजान पे आजकल की पीढ़ी वो जिम जाना पसंद करती है, लाइफ फिटनेस, हम लोग उसको भी मुहैया करा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को इन हाउस

हो रही है वो कुछ कॉमन स्किल्स देखना चाहती है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहती है, कॉन्फिडेंट पर्सन देखना चाहती है, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट देखना चाहती है और स्पेशली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखना।

से इंटर्नशिप जोड़ दी गई है और इसका फायदा इस तरीके से है कि ये कंप्लीट पूरे तौर पे ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। तो बच्चों को छोटे छोटे मॉड्यूल के फॉर्म में, जैसे हो गया रोबोटिक्स हो गया,

0: उत्तराखंड में, जो कि अब हमारा डिग्री कोर्सेज में स्टार्ट है, जिससे मैंने अलकबीर सुना था। मेरे पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आया। कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस होती है। बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर।
1: मेरा नाम माधव बेरा है, मैं चकुलिया का हूँ। बीसीए कोर्स है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। मेरे को इंटरेस्ट भी है बीसीए में, मजा भी आता है। अलकबीर का एनवायरमेंट में देखते हो तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया।
0: मेरा नाम ऐश्वर्या रानी है, मैं काफी पुराना और झारखंड का प्रसिद्ध नामी कॉलेज है। यहाँ का पढ़ाई वातावरण

0: घंटे के पड़ रहे हैं।
1: मेरी
0: जबरदस्ती यहाँ आके हुआ है क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मेरे शौहर जो डेथ कर गए थे, मुझे रास्ता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करती। मेरे दो बच्चे थे, मैं उन लोगों के बारे में सोचती थी कि मैं क्या करूँ, कि मैं आगे जाऊँ, आगे बढ़ूँ। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन मुझे ये रास्ता बहुत अच्छा लगा। मैंने कबीर में देखा कि ये रास्ता सही है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, कुछ कर

Thank you.

现在的

0: उस तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, संसद मार्ग नई दिल्ली 1-0-0-0-1।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़ने का।

0: तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन जारी की है वो भी बोलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान विशिष्ट पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: मुख्यमंत्री हेमंत

दोस्तों के साथ अपने लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। हमारे लिए 81 मत आता है और उसमें हमको 28 सीट चाहिए। हम वो पूरे आश्वस्त हैं कि हमें 28 सीट का आंकड़े मिलेंगे।

की बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए और 12 साल में जो रिफॉर्म है 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत को 5 लाख का इलाज हो रहा है 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 5 करोड़ से ज्यादा सभी फ्रंट पे ये देश प्रगति कर रहा है।

Pero va a ser eso, ¿no? No es el de la comunidad.

जोरा वचन बख्शी की सौरिका था। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। जनरल जोरावर सिंह बख्शी ने अपना पहला युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा, जहां वो एक पैदल सेना में शामिल थे, लेकिन अपनी भारी किले बंदी रणनीति के कारण स्थिति पर काबू पाया और उन्हें यादगार के तौर पर डिस्पैच में उल्लेख हासिल हुआ। इसके बाद अपने कार्यों से उन्होंने मेजर की उपाधि हासिल की। भारत विभाजन के बाद लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर सिंह बख्शी भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। ये एक ऐसी रेजिमेंट रही जिसने जनरल बख्शी के दिल में अपनी जगह बनाई। इस रेजिमेंट का हिस्सा बने हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर सिंह बख्शी ने अपनी वीरता का परचम लहराया।

सुनी अपना योगदान दिया। वो जब मैदान में आ जाते तो हर एक के चेहरे पर मुश्किल वक्त में भी मुस्कान आ जाती। जनरल बख्शी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो जब भी किसी युद्ध का हिस्सा बनते तो अग्रिम पंक्ति में होते। उनके साथी बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावचंद बख्शी दुश्मनों के सामने एक अलग ही रूप में हुआ करते। बाद के वर्षों में जब वो जम्मू सीमा में तैनात थे तब उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 2 एस्कॉर्ट जीप दी गई, तो भी वो उसका उपयोग नहीं किया करते बल्कि एक खुली कार में तिरंगा लहराते हुए यात्रा किया करते। ये एक बेहद जोखिम भरा काम हुआ करता था क्योंकि हमले का खतरा

दिया कर।

से सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की। इस सम्मान के मिलने का किस्सा जितना साहस, वीरता और जोश से भरा हुआ है, जोश की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के जीवन में बहुत पहले से हो गई थी। उन्होंने अपने रण कौशल से विभिन्न सम्मान अर्जित किए। बात साल 1947-48 की है, जब पड़ोसी देश के साथ युद्ध का हिस्सा बने जनरल बख्शी ने मुख्यालय में एक स्टाफ अधिकारी होते हुए भी अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आमतौर पर स्टाफ कर्मचारियों के द्वारा ऐसी वीरता कम ही देखी जाती है, पर कहते हैं ना कि देश की वीरता और साहस सही वक्त पर सामने आ ही जाते हैं। वीरता प्रदर्शन की चीज नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गुण है जिसकी चमक हर ओर फैलती है और इसकी रोशनी से भय का अंधकार मिट जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के नाम एक ऐसा सम्मान भी है जो भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी को मिला। ये पदक है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल। ये सम्मान उन सैनिकों को मिलता है जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सेना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करनी होती है। कठिन यात्रा होने के साथ ही भविष्य में बहुत चढ़ना काम होता है। इस सम्मान को हासिल करने के लिए पूरी तरह से हकदार रहे। जब उन्हें रणनीतिक सैन्य टोही का काम सौंपा गया तो उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, हिमालय

फ्लोरिडा था। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की फ्लोरिडा था। सेना के सबसे सम्मानित जनरल्स में से एक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और वीरता के कई प्रतिमान सीने पर सजाए आगे बढ़ते रहे। महावीर चक्र, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक जैसे तकरीबन 20 सैन्य सम्मान उनका मान बढ़ाते रहे। हालांकि उन्होंने अपने सम्मानों से अपना सीना चौड़ा किया, पर इसे सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उनका सिर मातृभूमि के लिए हर पल विनम्रता से नतमस्तक ही रहा। कहा जाता है जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो विनम्रता से झुक भी जाता है। कुछ यही गुण लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के व्यक्तित्व

सकता है। देश की माटी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से भी हमारे वीर सैनिक पीछे नहीं हटते। जहाँ युद्ध मैदान में उपस्थित होना आवश्यक है, वहीं जरूरी है नए सैनिकों को उचित प्रशिक्षण देकर तैयार करना। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर सिंह बख्शी ने यहाँ भी अपनी भूमिका निभाई। 50 के दशक में वो कुछ समय के लिए प्रशिक्षक के रूप में काम करते रहे। ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ही तरह कई बहादुर सैनिकों को तैयार किया होगा। यही नहीं, उनकी विनम्रता के कुछ अंश भी जरूर उनके विद्यार्थियों में आए होंगे। किसी वृक्ष की छाया में जो बीज अंकुरित होते हैं, उनमें वृक्ष के कुछ गुण भी बदल देती है। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य भी अपनी क्षमता को बढ़ा हुआ पाते हैं। बतौर प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर सिंह बख्शी ने कुछ दिनों तक अपनी सेवाएं दी और जल्द ही एक बार फिर युद्ध क्षेत्र से उन्हें बुलावा आ गया। एक सच्चे सैनिक की यही निशानी होती है कि वो केवल वीरता के डूंगे में

Story.com.

दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना लाजमी है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी अपनी रणनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी एक बेहतरीन रणनीति का उदाहरण है आगे जाकर देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विस्तार से बात करें उसके पहले यहाँ जिक्र करते हैं प्रसिद्ध चिकन नेक की, जिसे ये नाम जनरल बख्शी ने ही दिया। ये जगह चिनाब नदी और उसके आसपास फैला एक लंबा क्षेत्र है। इससे कुछ ही दूर पर अखनूर पुल मौजूद है, जो सेना के लिए यातायात का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह की जितनी उपयोगिता है उतना ही खतरा यहाँ बना रहता है। दुश्मन देश ने इस स्थान का नाम खंजर रखा हुआ था, जिसका कारण यहाँ के खतरे से ही था। भारतीय सेना के लिए इस स्थान से गुजरना खंजर की धार से गुजरने जैसा हुआ करता। लेकिन साल 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने इस स्थान का नाम बदलकर चिकन नेक किया और कहा कि ये स्थान उसी तरह से सेना के कब्जे में आएगा जैसे एक मुर्गी का बच्चा आ सकता है। इस नाम से ही उन्होंने अपने साथियों के मन में ये बात बिठा दी कि इस इलाके को कब्जे में करना इतना मुश्किल नहीं है, जबकि मामला इसके विपरीत था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने जो बात कही थी उसे कर भी दिखाया। मात्र 48 घंटे के अंदर इस क्षेत्र में तिरंगा शान से लहरा रहा था। सेना का मनोबल ऊंचा हो चुका था। जनरल बख्शी ने कुछ इसी तरह का साहस और पराक्रम दिखाया था हाजी पीर पास को अपने

1965 में सेना के सबसे महत्वपूर्ण शानदार और सफल अभियानों में से एक ऑपरेशन बख्शी का नेतृत्व किया। इस ऑपरेशन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। उन्होंने न सिर्फ इसका नेतृत्व किया बल्कि को प्राप्त किया। यह सिद्धांत 9 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाजी पीर पास पर देश का झंडा लहराने का। हाजी पीर दर्रा सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये देश में घुसपैठ करने का एक प्रमुख प्रवेश मार्ग बना हुआ था। साथ ही पूंछ और उरी के बीच एक सुगम रास्ता भी था। हाजी पीर दर्रा तीन ओर से पहाड़ों से घिरा है। पूर्व में बेदौरी, पश्चिम में शंख और दक्षिण पश्चिम में लेड़ वाली गली। हाजी पीर तक पहुंचने के लिए इन तीनों पोस्ट पर कब्जा जमाना बहुत जरूरी था। ऐसे में दुश्मनों की नजर से बचना आसान काम नहीं था। एक रणनीति तय की गई

शक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़ी। इस अभियान को नाम मिला ऑपरेशन बख्शी। ऑपरेशन बख्शी और ऑपरेशन फौलाद को सफल बनाने के लिए सेना निकल चुकी थी। ब्रिगेडियर बख्शी का अनुमान था कि विरोधी सेना तकरीबन 3.5 बटालियन के साथ उनकी राह देख रही है। उन्होंने बाएं से पूरी संख लेड वाली गली फतह करते हुए हाजीपीर पहुंचने की योजना बनाई, तो दाएं से पूरी बेदौरी कुटनार की गली किरण होते हुए हाजीपीर पहुंचने की योजना थी। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के साथ दूसरी ओर से सेना का नेतृत्व मेजर रणजीत सिंह दयाल के हाथ में था। ये पूरा मिशन 3 फेज में होने वाला था और 26 अगस्त को हाजीपीर पास पहुंचने की योजना थी। ये सारा अभियान रात के अंधेरे में करने की योजना बनाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाके में योजना आपके अनुसार नहीं प्रकृति के अनुसार चलती है। मौसम बिगड़ने के कारण कुछ देरी होती गई और एक दिन की देर हो गई। भारी बारिश के कारण संघ तक धीमी गति से पहुंचने के कारण रात के अंधेरे में पहुंचने की योजना दिन के उजाले में तब्दील हो गई। दुश्मन भारी हथियारों के साथ तैयार था। सेना को देखते ही हमला बोल दिया गया। सामना करते हुए हमारी सेना ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ती गई और एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर जवाबी हमला किया गया। आखिरकार सफलता ने भारतीय सेना के कदम चुने।

बढ़ती सेना ने संघ पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर से भारी हमले का सामना करते हुए जवाबी हमला करके आखिरकार सर और लेड वाली गली पर भी तिरंगा फहरा दिया गया। रावचंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह खाजी पीर की ओर कूद करने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर से आती सेना अभी पहुंची नहीं थी, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिगेडियर जोरावरचंद बख्शी ने सेना को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। अब दुश्मन से सीधा सामना था। तकरीबन 1220 मीटर की चढ़ाई सामने थी। भारी बारिश का सामना करते हुए सेना आगे बढ़ी जा रही थी। ये एक मुश्किल मिशन था, क्योंकि पूरी पलटन दो दिन से भी ज्यादा समय के लिए इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ी। तभी दुश्मन को भनक लगी और उसने हथियारों के मुंह खोल दिए। सेना ने जवाबी हमला कर उन्हें शांत कर दिया। तब तक शाम ढल चुकी थी और हाजी पीर तक अंधेरे में ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिगेडियर जोरावरचंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह दयाल के साथ सेना मुख्य लक्ष्य हाजी पीर पास की ओर बढ़ रही थी। एक बड़ी चढ़ाई करने के बाद अब हाजी पीर तक पहुंचने के लिए रात का समय चुना गया। साथ ही एक और रणनीति बनाई गई और दुश्मन को दोनों ओर से घेरने के लिए पलटन को विभाजित किया गया। जैसे ही दोनों ओर से सेना हाजी पीर पहुंची, दुश्मन के होश उड़ गए। हड़बड़ी में उसने वार करने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रे पर भारतीय झंडा शान से लहरा रहा था। ये एक बड़ी रणनीति थी, क्योंकि इससे घुसपैठ की गतिविधियों पर तो लगाम लगा ही, साथ ही भारतीय सेना के लिए आवागमन आसान हो गया। जहां पहले पूंछ से उरी के बीच सड़क की दूरी 282 किलोमीटर थी, वो अब मात्र 56 किलोमीटर में सिमट गई। हाजी पीर दर्रे और कबूतर पर कब्जा करने के लिए पूरे ऑपरेशन के दौरान जोरावरचंद बख्शी व्यक्तिगत रूप से सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहे। दुश्मन की तीव्र गोलाबारी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो सबसे आगे बने रहे। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और हर परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता का ही नतीजा रहा कि सैनिकों में भी साहस का संचार हुआ।

प्राप्त करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी सेवानिवृत्त हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें वैधानिक सेवानिवृत्ति आयु से आगे तकरीबन 3 वर्ष का विस्तार भी दिया।

से देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की चौरीदाथा। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत

0: 上事业的顽皮阿拉古皮。现在是路港，下面的是高文丽、高艳丽、陈丽琪、马丽华、夏拉。शाम 6 बजे से 45 मिनट पर संगीत सेना सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सात और

0: कर रहा हूँ मगर चार लाइन नहीं लिख सकता। बचाल है कि कोई काम इतना करने दिया जाए। दो घड़ी की शांति मैं तो नहीं है घर में।
1: शांति शांति शांति यदि वो घर है जहाँ हर दम मर्जर का सामान खड़ा रहता है। जरा कहीं खतरा हुआ कि पढ़ लिया।
0: चन्नो
1: चन्नो नहीं शांति शांति है मेरा नाम। समझे?
0: अरे समझ गया।
1: क्या समझ गया?
0: यही कि तुम्हारा नाम चन्नो नहीं शांति है और ये
1: और क्या? अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या?
0: कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं। तो तुमसे ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
0: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़िया खींच खींच कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: नहीं कुछ नहीं समझी।
0: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
0: और तुम्हारा?
1: शांति
0: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात होगी?
0: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है? अब देखो ना, ना तो मैं अमीर हूँ और ना तुम। छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जेब में गुनी भांगी नहीं।

0: कैसे ना मरते, सब तुमसे ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
0: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़िया खींच खींच कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: मैं कुछ नहीं समझी।
0: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
0: और तुम्हारा?
1: शांति।
0: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात होगी?
0: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है? अब देखो ना, ना तो मैं अमीर हूँ और ना तुम। मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जेब में गुनी भांगी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद, और तुम्हारा
1: मेरा?
0: तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना
1: जैसा। ठीक है, ना जाने तुम कवियों को क्या बैर हो गए है अपने घर वालों से। कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप, मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा सर छोड़ो, मुझे क्या ये बताओ कि तीस कीचड़ आसमान को छुपा कर उठा रहे थे?
0: मैं सीख रहा था। भाई वाह, ये भी खूब रही, उल्टा चोर कोतवाल को डाल।
1: आए लो सुनो इनकी बातें, अब मैं चोर भी हो गई और आपको देखो बड़े आए थे कोतवाल बनकर। सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूदते हैं और समझते हैं अपने आप को कोतवाल।
0: नो सुनो, मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम बोली उल्टी सीधी बात।
1: उल्टी सीधी की क्या बात है, नहीं पीते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इस तरीके को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती, मगर देख लेना एक दिन इसी साइंटिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में सहसा मचाओ। आज के लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो, तुम क्या समझोगी, इसके आगे भी बजाने से भी क्या फायदा है। अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पाने दो।
1: अभी लिखो, खूब काले करते रहो कागज। मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो ये तो खुदा वहाँ की, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे बुरा।
0: ओहो, बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी, अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो।
1: हाँ हाँ मैं तो जानू हूँ उससे बात करने में तुम्हारा मूड खराब भी होता है, पर कान खोल कर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा, इसकी बेकार में तुमसे अपने भेजे के ठीक करूँगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में गन्नों की माँ के पास, तुम बैठे रहो इन कागजों में सर्दी।
0: हाँ बाबा जाओ, जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो
1: कहो क्या है, अब क्या बात है?
0: अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई?
1: नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था।
0: आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई, तुम भेजी हो? कहो खेत की तो खुले खरीदी की।
1: खरीदान का क्या जिक्र है जी, तो मैं भी तो खेती की बात कर
0: रही हूँ।
1: कि आपका चने की फसल है, खेती लहना रही है, दो चार रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़ कर खाओ।
0: खेतों से ताजे ताजे चने बहुत। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊँट समझ रखा है कि खेत पीट से मैं सतर्पा करूँ? मैं
1: अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़ कर खाना अच्छा नहीं लगता?
0: बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है, बख्शो मुझे, मुझे लोहे की तरह ही जमाने दो। अरे मेरे किस्मत में तो यही लिखे
1: है। आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है, खैर आप जाए या ना जाए मैं तो जरूर जाऊंगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे।
0: शौक से तुम जरूर जा सकती।
1: और हाँ मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ अपनी घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की दो भेलियाँ भी दी थी।
0: मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है, आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिए की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ही असली घी और गोल देखते रहते।
1: इसमें क्या बुरी बात है?
0: बात बुरी हो या भली हो इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदि नहीं हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा, असली घी भेज देख कर मेरी आदत खराब न की जाए। असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है, ये गुड़ की खेतिया। अरे तौबा तौबा, उनकी तरफ देखने से तो मुझे मछली आने लगती।
1: हाय हाय, इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चल कर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं।

0: क्या ममता की रख खड़के है कि तुम जैसे नाशुकुरों के लिए सबसे अच्छी चीजें भेजते हैं। अब उन्हें कुछ कैसे समझाए क्योंकि मोहब्बत की यहाँ पर यह कदम होते हैं।
1: सबसे पहले अरे उनकी मोहब्बत से कौन कम वक्त इनकार कर रहा है, लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये सादा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है। सच कहता हूँ चन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो एहतराम है।
0: बस बस मैं सब जानती हूँ, बंसी जी ये किस्सा नहीं तो।
1: मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी, के गुस्से को यही खत्म कर दिया जाए। क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो तुम्हारा।
0: देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो। भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो।
1: मूड? अरे मूड नहीं चन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो? अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते।
0: अभी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या? इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ ही ना पाऊँ।
1: अच्छा अच्छी बात है, तो बैठो आज तुम्हें समझाई दूँ कि मूड क्या होता है।
0: हाँ हाँ समझाओ कि मूड क्या होता है।
1: मूड मेरा मतलब है, मूड मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो।
0: यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है। तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहेंगे।
1: नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम पूरी बात को सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
0: ओहो,
1: अब जैसे फर्ज करो सबकी दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाते बैठे, मैं तुम्हें एक तक निहार रहा हूँ और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो, तभी मैं कहूँ शन्नो जी तुम उस वक्त मुझे बड़ी ही लुभावने लग रही हो। जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन पिंडोरी मोतियों की माला पोत कर तुम्हें पहना है। तुम्हारे पल्लू के हिलाने से जो झीली झीली हवा निकल रही है, इसलिए आओ हम तुम उड़कर आसमानों को छू जाए। तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूँ, रोमांटिक मूड।
0: कौन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि उनका मूड फिर गया है।
1: अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम यही समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा तुम जीती महाराज।
0: मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड गिरने की, तो भगवान ही जाने है कि किसका मूड गिरेगा, तुम्हारा या मेरा। पर तुम अपना मूड अच्छा करके रखो, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गाँव जाती
1: हूँ। हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी।
0: पर खाली हाथ थोड़े जा सकूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। नाम निकालो रुपए, मैं आगे चली जाऊंगी।
1: लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकाल
0: लूंगी। तो मैं जानती हूँ मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, पर अगर मुझे भेजना है तो रुपयों का इंतजाम करना ही होगा।
1: इंतजाम तो मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूँ, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी, तो रुपयों के ढेर लगा दो।
0: अच्छा तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उससे रुपये मिलेंगे?
1: हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ।
0: अच्छा तो लो, मैं जाती हूँ, तुम लिखो। तो जब रुपये मिले तो मुझे जा जरूर भेज।
1: अरे जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से।
0: मैं जाती हूँ, जाती हूँ। पर हाँ, आप कब तक आएंगे रुपये? कब तक भेजोगे मुझे गाँव?
1: अरे बस बस, एक पब्लिशर फंस जाए।
0: ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर?
1: पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर।
0: क्या तक पूरा हो गया ये उपन्यास?
1: बस बस बस, शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो।
0: कब तक शुरू करोगे?
1: अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा।
0: पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें?
1: थीम की बात तो बस

15 minutes.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम

0: बात किया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा से भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर के लिए रोज एक रुपया दान करने की थी और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात टीचर से हुई, करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं, उनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित कर

sebab

की नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर बीर सिंह, विशाल टीपी,

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनलाइन पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मणिपुर में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर भाजपा बनाया।

Primera de Corintios 10:15 al 16.

से स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा के लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट साउ नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलान के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्क और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं।

क्षेत्र में क्या है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोचिकम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस

चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल

पर गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कार्यकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय

0: Shiva. Namaskar.
1: आप सुन रहे हैं दूर भारतीय राष्ट्रीय सेवा आयोजित कार्यक्रम आपके लिए।

me.

आज के सरकार हैं अपने दौर के यानी

है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो

charitable,

ने आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। राज खोसला की फिल्म

हिट 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज मिली

प्रतिभा को पहचाना था शुरू में और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म गुलाब के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे। यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उन

में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर

करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, दीना तमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत

मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस

कुछ सेवक दिया, आकांक्षा सिंह ने कार्यक्रम से प्रस्तुतकर्ता रमेश पोखरे और अब दीजिए आज के प्रोग्राम से